0: sister Laimapokpom Ranjita Devin hai healthcare system apangal kankhat hanabagidamak nursing da hongloklibas siksagi lamsing phanganba makoibu sakti hapiba amasung training piba haibasi yamnamak tangai phade mang hai malem sidangasi ahongba kya lakle lakliba ahongba sing asi singnaba kya ga loinana thengnaba tangai phade mahakna hai
1: Nurses Day ma celebratory se akoi gi profession sida laiba nursing oi haibagi celebration nati akoi na kare gi damakta tamoino haiba purpose sida koi na celebratory ni kare gi no haibadi akoi di humanitarian service ne compassionate oi kadam ni aduga akoi na patient du gi dignity and excellent health care provide to kadam ni aduna akoi na ngasi international nurses day asina lakwa matam da isona akoi bu hena thona happy ba amadi ana babu phagal han na bagi damakta garam ba wahaina anababu inspire ohen gadagi aduga masa phaba community ama puthokadagi hena compassionate over future ama ohen bada kari mateng panglasige haibadu ishona khoida pina bibo orsin
0: malem gi nursing gi nomina lakpada mukhyamantri yumnang khemchan singh na nursing da yapha paujel pirakli paujel lamda siri khemchan hai kumchi chai gi hiram asina nursing na haksegi lam hena mapanga kakana na ba lauri ba thokdang bu ulli Nurse ki numina lakpada sinpham asida leiriba singbu matam punamakta sakti pibeda natana makhoiba pungling thogotpaga loinana mateng pangduna makhoina punsi kannaba amadi samas asibu kannaba lauriba thokdangbu matam leiba khibikta ikai khumnaba khumnapham thoi Security force na ngarang tongan tongan ba lalol singi miyoi taruk faki Manipur police control room na thopa cherol amana hai Imphal East jila gi Lamlai police station gi manung chanba Nonga da chana degi RPF PLA gi miyoi mari faki makoina loop asida pusina bo hanara mana ha ohum sukkan ba ngam hore hari Security force na ngarang Kaksing jila gi Irangban mai ai lekai degi KCP taibangan ba gi miyoi ama faki mangon degi tongan tongan ba khulai mari ahangba magazine kuntrataru bom ahum detonator tara mathoi lethot sel mari kapa yariba nongoi maru lising ama chamapan marphudra ahum doi phagaki numin asimakta security force na Imphal West jila gi tarung grace colony degi kcp apun bagi miyoi ama phaki haukiba thangja numita security force na su group te yaugdaba jogam liberation front zlf india region gi masana masabu commander in chief ni haijaba miyoi ama sel khaiba ga mari rena na churachan police station gi manung channa leiba masagi mayum gelzang village degi phagat ki hairi Raijagi veterinary amasung animal husbandry vibhag na hairi ok singda naganba amadi yamna launaganba laina ama oriba classical swine fever CSF ki ahum siba round gi tika thabagi thabak lagliba irai numite gi haurgani vibhag asigi director na thokpa cherol amana hai laina makhal asina ok loiriba miyoi singi semilonda achoba cheithing ama piduna lakli laina asigi ngakthoknaba livestock health and disease control program gi makhada Raijagi veterinary vibhag na tika thadopagi thabak asi paikatuna lakli ओक सिंग टीका था राज्य की मफम पुनमक पांगना थौरंग चौरी नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी खुमन लंपाक स्पोर्ट्स कंप्लेक्स इम्फाल एकेडमिक सेशन लिसिंग अनि कुंतरुक कुंतरे की ओइना क्लास सेवन मिंग चेन्नबगीदमक एस वेरिफिकेशन अमसुंग मेडिकल फिटनेस टेस्ट था सिगी तरा निपान दगी कुन फाव पांगथोकलगनी कैंडिडेट सिंग ना आयुक पुंग निपान फाव गी ममांग दा नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी की प्रिंसिपल दा रिपोर्ट तौरगदबनी अकुपमरोल एकेडमी असिगी नोटिस बोर्ड की खंग यागनी ताबिरिब पावसी आकाशवाणी इम्फाल देगिनी बीजेपी लुसिंगब हिमंत बिस्वा शर्मा अनिरक सुबा ओइनांगासी असांगी मुख्यमंत्री ओइना वासक लौरगनी वासक लौबगी थौरंग गुवाहाटी खानापारादा लैबा वेटरिनरी कॉलेज ग्राउंड द पांगथोकनी केयर टेकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ना खानापारादा चतुना मफम मदुद सेम सारीब सिंग यंगसिनकी तुंद पाउमी सिंह वांगांगबद मांगना है वासक लौबगी थौरमद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह ngaksel मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नवीन शरुक यागनी मसी की मतक केंद्र की मंत्री सिंह अमसुंग बीजेपी ने शासन तौब राज्य सिंह की मुख्यमंत्री सिंह शरुक यागनी मुख्यमंत्री युमदांग खेमचान अमसुंग उप मुख्यमंत्री नेमचा की गेंजु वासक लौबगी थौरमद शरुक यारब याय असमद इंडियन शासन तौरप हंदकी थारगा अहुमलक सुबनी हंदक पांगथोकी राज्य विधानसभा मिखल अपुनब सीट चाम कुंतरुक मनुंग इंडियन सीट चाम अनी फंखिबनी मसीगी मनुंग बीजेपी ने सीट मरफुनीथोय असम गण परिषद अमसुंग बोरोलैंड पीपल्स फ्रंट ना सीट तरा तरा फंखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी लेबाग असिगी मियामना मपानदगी पुसिलप पोथोक्सिंग लिखना सिनबा अमदी मपान लेबाग की सेल सिनबा हंथनबगी तंगाई फदब लेरी बदोदरादा लेबा सरदरधम हॉस्टल संगाबगी थोरमद वांगांगना दुना प्रधानमंत्री नहाई हौकी बसेही तरह असिदा हौजी

0: Thangjam Sanahal Singh na Khongba Clarinet Tapiri Akashwani Imphal Haujik Ayuki Pungnipan Tari Delhi Dagi Rileda Samachar Prabhat Morning News Amadi Silong Dagi Rileda Awangnong Polam Thungi Pau Mathang Mathang Hoina Tapirasi
1: Namaskar Akashwani Se Samachar Prabhat Ke Saath Main Mukesh Kumar प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है।

0: हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व सरमा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
4: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता

0: पक्षी मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
3: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
0: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज पर संपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2,800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
5: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका के संयुक्त

0: तो मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. 4 ministers, 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF to also take oath. EDRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel, stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis. Prime Minister said there's a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
4: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत

उसम निर्जित कुमार सिंह की खुंजलदा लाइश्रम कैनेडी ना सैरिंग बमतम से मताबिरे सैसक पासी की अनिसुब खुदोल द अमुलोबिरसी केजित मैतेना सैरिंग बमतम इसे

0: उसम निर्जित कुमार सिंह अमदी सापम रीना देवी ना
1: The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in bid to save foreign exchange amid West Asia crisis. Prime Minister to be on a six-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy beginning Friday. Lok Sabha Speaker Om Birla says India and Sri Lanka are bound by deep civilizational, cultural and spiritual ties that have evolved over centuries. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products and to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduce consumption of petrol and diesel, stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis. Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden of the country's resources.
2: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
1: Prime Minister said that India spends lakhs of crores of rupees in foreign exchange to import many products from abroad and the crisis has led to a steep rise in imported goods and severely disrupted global supply chains. Mr. Modi said his government is working to ensure the impact of the crisis on Indians is minimal.
2: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता मेरी देश के हर नागरिक से अपील है जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें मेट्रो का उपयोग करें इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें कार पुलिंग को बढ़ावा दें
1: Prime Minister Narendra Modi will be on a six-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy from Friday. The visit will further deepen India's partnership with Europe across sectors, particularly trade and investment ties, in light of the recently concluded India-EU

0: 3 wickets at the Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharmashala last night, chasing a target of 211 runs set by Punjab Kings. Delhi Capitals scored 216 for 7 in 19 overs. Keeper Akshar Patel was the highest scorer with 56 runs. David Miller made 51 runs off 28 balls. For Punjab Kings, Arshdeep Singh and Yash Thakur took 2 wickets each. Earlier, Delhi Capitals won the toss and opted to bowl. Put into bat, Punjab Kings scored 210 for 5 in the stipulated 20 overs. Shreyas Iyer was the top scorer with 59 runs, while Priyansh Arya made 56 runs. And now, before we close, here are the highlights of the bulletin. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save foreign exchange amid West Asia crisis. Prime Minister to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy beginning Friday. Lok Sabha Speaker Om Birla says India and Sri Lanka are bound by deep civilizational, cultural and spiritual ties that have evolved over centuries. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. And that concludes morning's World News Bulletin. For more updates, stay tuned to Akashvani.
1: Delhi dagi rile laudna malem gi pau tabiri Akashvani Imphal hauji ayuk ki pung tarama khaitari Kangla channel ki ahan bathoram pareng loisen janabagi pungja adu yorokle nomidung ko pung tarani choi taba matam dagi Kangla channel ki ani su bathoram pareng sandok pahukchakani sandokchaka daba medium wave meter 40.1 kilohertz ani pan marfuni toy matam adu phawu tangi kainanaba yathangni chari pinapirasi
2: सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
3: मार्केट के बारे में क्या?
4: परफॉर्मेंस का बोलो।
3: बी द फ्यूचर।
4: मार्केट ट्रेंड देख।
3: सुनने में आया कि
5: आज की खबर देख। पहले ही बोला था ब्रो।
4: माय प्रेडिक्शन इज
6: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन।
4: मेरे दोस्त ने बोला।
7: देवर जी की सुनो।
8: अब अच्छा लग रहा है ना? लगेगा ही। हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है। आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो। म्यूचुअल फंड्स सही है।
9: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

आकाशवाणी इम्फाल हौजिक लांथोक्चरी रेडियो लीला लाई की सिदा अईब श्रीमयूम राधेश्याम शर्मा लीला पुथोप निंथौजम लोकेंद्रजीत सिंह ताबीरसी रेडियो लीला लाई की सिदा।

0: लगे लवाई दे सिंह थार फजवनी दा अपामु वजन ये को ये लिसिंग चप्पी नंग बो ये निमिष्टी सब जुए अरु वाहुजी खाओ सीधा अमृत लगते सीधा लगते रब दी लाई से बाटा वो सु बिक जाओगे नोंग भादो सीधा अम खक्कल लाग पसी सु मकू न खुतुम मुक्तार रब लपोई कले अंगांग पीरु बता सा भी हुई आप दी लाई रजना लपो तो येंग येंग ना नोंग कों दी भाव कप कंग्रे तब तो रिबल सिब करी नो मिया हम लाई द कटपी रज रब दी कली के ब्राह्मण ने कोई दी करम ने हिंदू रिबा
1: कारी नो गया लाई से बादी तो बिदे देना मुरम मुरम छोली बदु बो
0: यूं नहीं तुम ही नंबो हम जी किसी तो रुस महुक सा का क्या खेने कर बन थाई नदी पाई पुसिंग ने नारो ये ओ पांजी द चतन कुठी यंग लगा प्रतिकार नहीं है जनो लाई द पोते ही कटपा सिद्धान सिंह बा नो मत लेप तने तो उन्हर मी अतु बु हो जी ती कदाई खजिक तंग नारक पता डॉक्टर द चले हाँ डॉक्टर ने चीये बड़े हिदार वांग थक ईज न फार मासी द वो न सिद्धा तुम चकरे सिद्धू कली ही ब्राह्मण कोई करी चाज न हिंगे दो रिनो खंग दे
1: हायो अखोई की अगागी वता सिदिने नोक तुम नोक
0: हा
1: अदु दी डॉक्टर सी आई गाद दी एक न बता रे ने
0: नत दे न कोई न नत्र सीधा खर लाक दबा साधन सिंह कर्म खर चत न हिंग जग द ब्राह्मण की संफम द दृष्टि पिसन दुन थिंग नि जा
1: अदु दी आई सुनार बदी डॉक्टर की दाक अमत जाबी रुनु
0: कदे वो चा दोर बा कदे वो चा दोर बा इपा आई पुने थनम बा आयो ब्रेड की हिदा के आम लई कैनो
1: ए अया अदु दी करी गुम पुक्तगा नुंग लैदना ऑपरेशन तौ बतार बदी डॉक्टर थाजे दबनी ना होराय ने लेले ग बिर चा
0: ग बता कैजो बगी पुक्त होराय ने लेन गे दोरी बनो हिदाचार ग नुंग दो अदुम तुम जे खिनिदा
1: अदु दी अया ग सिदी सिधा लाग त बगी छौबी दी माने ने
0: नत दी सारी बलाई संग सिबु कैजो न बनो है
1: ए ए
0: हा हा सिबु सिनेमा होलो मियाम गे अवाना कुक नबा लाइनिंग लाइ सोन तौर ग पोचै कट नबा मफम ने से
1: ओ अदु ओइ रग न ने आइ गा ने यम थों खुदिंग चतुना सिधा थि लग न नबा बाटोन हे था बिरु रो अदु न सोइ ले रो ये
0: ग्या अदु वान तिन हे तों बि आइ न बाटोन था द्रब सु मसान खंग न सिधा दो म खोसु नो म गे म म दि थिलक प याइ दना
1: ए ए
0: न ति ब्राह्मण आइ कोइ होगी पु लाइ गि मरन चाब तो तुना संपोट खोइ रग हिंग नबा हो न ग दरा हाय बा
1: कया
0: अदु तो रब सु आ आइगा चाबो दो संपो खोइ रे हाय दो वा वा नोंग न बिगे दउरी बनी ने
1: ए आइगा न संपो खोइ बिरु द्रब सु ने देव कर्म न चिंग बगी सा थोंग थोंग चतुना बुजा बुजी तो दुना हिंग बयै कैनो
0: होगी पु कदा जगे देव कर्म गी सा खुम नोने थरानी तोंबी
1: ए बमोन मया म म सा थोंग चनेरी सिदी गया
0: ए अदु वानते तोंबी नंग खंदु न मुटंग येंगु हौजिति डाक्टर लैरबनी न मी सिबगी चांगसु हंटरे
1: आ
0: औ सादी कोलेरा टाइपत नो मुद कांग दे मिसि मिनागी कर्मसिना ममंगै जति हाइखा हिनो मुचा चारे ग नुंगसा यायरेगा इरुप तुना अंगांग सिंग न सानेरे मी अदुबु हौजिकि अंगांग सिंग दी सिंग लबनी न तौकिदरे मसिदे बुलाई मरन चार ग हिंगे दोरी ब ब्राह्मण ए खोसिबु खनबु द लुरी हाइबा
1: आइ गया मी ने ता खरगने करी हाइने खिनि
0: हा
1: तब नंगांग बि ओइ गया करी गुंबा ता खिला खिबो थोकलबदि खेत्री मयाम सिंगसिना आइ गया हान सिबिरो कर्मगि साखुम दो आइ खोइ ओइने थोंजरेगे हाइराबदि कमदो
0: नि हान तौरम बु तौरम मी हाइबनी मसिदा करी काइबो लैबगेने थौरानी तोंबि
1: होइने गया मदु सुचुमनि बनिने मी नगा चिनछिलक पसिदा ब्राह्मण गि सिनफम तौरगा हिंगनि दो हाइदन हिंगलिबा इखोइ सिसुने वथोंग न लुरि दाइ ग्या
0: कैदै देव कर्म तोइन थोकथ्रे हाइबा खंगे अदुबु नोंग फादोक लाइदा पोरचै कल्ला बददि लैयाम द्रबसु पैसा दि खरा याम हलौदना
1: ओ लौनिंग मलबसु ने लेकतुन तोइ हाइबा वा लैबनि कोइ ग्या
0: लाइ मरन बु ब्राह्मण लौ द्रबदि कनान लौगनि तोंबि पैसा याउ द्रबदि मी एखोइ जे युम्बान छाति ओइदिने खनबने नति नुमि निनी चरा हेलबदबु नंग आइगे नुसिनब याखि गद्रा हाइबा
1: ए आइगे आगे वता सिदिने महोंग अमनि प्रभु महादेव ग इमाइ बि म दुर्गा ग अदो ग्वान युम्बान मिनेरबसु नों मत खनै तादि याने याने बसु मिनो मिनेरगा दुम ले मिने
0: करि कनान महादेव ग दुर्गा ग खन दे हाइबा
1: आइबु खनबगी वारी दिता खिद्री दै ग्या
0: ए प्रभु महादेव ने गंजा थखि बदो

आकाशवाणी इम्फाल हौजी पुंग तरानीथ तारे कंगला सेनेल के अनीशुब थौरम परें छंदोप हौजरी संदोक्सरीब मीडियम वेब मीटर चहुम निफु दशमिक किलोहर्ट्ज निपान मरफुनीथ हौजी मणिपुरी पाउ तासी

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
1: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
1: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
1: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
1: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
2: है जी,
1: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
1: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
1: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
1: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: क्या कहते हैं?
2: थर्मल लैग।
1: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
2: जी।
1: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
2: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
1: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो

0: तभी बाहर निकले।
1: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
0: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें। और हाँ, प्यास लगे या न लगे, थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिए। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
1: जी।
0: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
1: जी हाँ श्रोताओं, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने।
0: जी
1: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो।
0: जी
1: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
0: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
1: जी, तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
0: अपना और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
0: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे हैं?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आओ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चलें।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा, भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलूं देखूं। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया, यहीं पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन मोहन, क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं, मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ, हाँ चलिए चलिए।
2: हाँ, हाँ, हाँ। आ गया डॉक्टर साहब का घर, इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
3: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
3: ओहो अच्छा, इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई, और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
3: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
3: लाओ अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: हाँ जी,
3: ऐसे। लाओ अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी।
3: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है
2: जी।
3: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
3: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी,
3: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
3: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
2: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
3: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
3: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए।
2: जी।
1: और अगर लू लग जाए तो?
2: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
3: भाई, लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए।
1: जी।
3: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
1: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
3: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
2: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
1: जी।
2: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
1: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
3: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
2: गर्म हवा से रहे हम दूर,
4: ठंडक में खेले भरपूर।
2: ठंडक में खेले भरपूर।
3: आग बरसाती धूप।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
6: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
5: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
7: इन्हें हमारा सलाम।
5: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परम वीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। नमस्कार साथियों।
8: साथियों नमस्कार।
5: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
8: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
5: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
8: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
5: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
8: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
5: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
8: उनके शौर्य को देख कर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
5: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
8: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा, पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगी।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गनें बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक एल्बर्ट इक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट इक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट

0: का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट एक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट एक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम।
2: परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

करुणामयं गुणनिधि विपरप्रियं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं रघुवरावन आरिं दक्षिणे लघुनधनी वामतो जानकी शुभा पुरुतो मारुति जैसे तं नमामि रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे सीतापति सीतायां पतिये नमो नमो। शिव नहाय तौ प्रिय दुर्गा परंग ब्रह्म भावांगी नमामृत वैगरवा अनागत पुराल शिवरी संत हो एकांतिक भक्ति गलोजन ताग निधु प्रिय कोमंद्रव महादोष हुंबू

ஆகட்டும், புறாலசி முத்தாஜர் ஏறுகா தோஷபுரம கோட்டனா மகாபைஷ்ணவியவ நாம உபாதி பங்கதோரி மீதோ பிரியா சிவசதி மாகி மபந்தா தக்வீரி பிரபுனா புங்கோ நகந்த பிரித்த சைத்த பாலங்கிதமப்டா சஹி தராக மறி போண்டலிங்கிரப்பா பரத்வாஜ முனிகி மபந்தா பொட்டா வி கோத நாய்வதா அராம் நாய்கி மாமுனி ஹந்தக்கி கொம்ப மசிதி பொட்டா ஜரரு ஹயேங் ஐன ஹலக்ப மட்டந்த மகாமுனிகி ஆசந்த ஐ பொட்டா ஜரகி அதனா மாங்க ஹைங்க இவ லைவதுனா ஹந்த பிரபு ராமச்சந்திர இவுங்கோனா பரத்வாஜ்கி ஆசந்த லிங்கன் பிரக்பனி இவுங்கோ மான லிங்கலத்தனா மகாமுனிகி மஃபந்த மகாமுனி ஐ லாக்ஷரே மகாமுனிகி மஃபந்த பக்தி கச்சேரி மகாமுனி பரத்வாஜு லிங்கிரை கோலோக்கட ஆத்த பகவான் ஸ்ரீ நாராயண் இவுங்கோ இவே மானி புக்கரம்னா புஜா கயாசே கச்சரேரேகா நுங்காய்ஜரே இவுங்கோ ngasi ahing sima tangdang de di nana ina sewa phangje ge laib puna mok singa sibu pie ne na bai sewa ho na je ge mahamuni puna mok singa sibu pie ne na ba mahamuni ne sewa lang bi ge do lang bi u hai jana ibu ngo gi ma pham da hai je ra mi ra ga yang gar ba bhalu ka bandar sawom yo mi de ngo hi cha ba lakha ahum ni loi na re i ba அஜோதி ஹாபு எங்குனேன புனமக் சிங்கசே லோய்னா தூங்கரபதா மகாமுனிதோ சங்கமொய்புங்க மத்தா பாய்கல்லேரகா தௌராங் புனமக் லாங்கேருகி ஹரமேக பரப பெத்தோக்கி அவுப சௌம் யோங்கி தேங்கோன் சிங்கதுனா ஆங்கானேயே ஐ கோய் மயாம் அசுக் யாங் ஹரப மயாம் புனமக் சிபுவோ பியலங்கனி லாங்கனி ஹரிப்சி கங்குரா கந்தவுரகை கோய் மையாம்சி பேலன் தோய் நோய்ச்சி நோய் கங்குரா அதுதான் கங்கி ஹைங்கபசு எவ்வளோ கங்ககதி ஹைவுதே தாக்கேனே பாமோ லைனிங் வாய்ப்பு மத்தபு ஹக்க பூக்ரிப்சே ஜோர் தன் ஹாப்பேரேகா நுமிதாங் இங்க ஆப மட்டம்துதா பாமோ லைனிங் வைகி சங்க ஜோன் சாய்பியது சாயரதோரிங்னி அதுதே கோயினி இங்க அதனா இங்க அதன வே வே வே பியலே பியலே ஹாய் தோரிப அதுனி பியலங்க தோரிப்சே சோம்தௌதன ங்கங்கதன சோம் யோங்சிதுத லேடி சோம்த மகாமுனி தப்பைசா கல்லவ மகாமுனி மகான தோக்கி தகத்த தப்பைசா தௌ கரே தோக்கி பாங்கன் கி சக்தி ஏசி அங்க பரி கோ தேவி சாம் ஹெப்தா ஜோஜோன் மார்பூகி லம்மசி விஷக்கர மபு கௌடனா மாக ஜோகி சத்தி லைனிங்கி த பைசாகி மகுல் லடுனா மஜித சனாகி யும் புனமுக் லோய்னா மயாம் புனமுக் சிங்கசே லைவு யானனப லோய்னே சாகிரிம்னி சொன்னத சாப நத்தியனே சனாகி யும் சாரிவ சிங்கதுகி லைத்தி கையா மஜித லம்பி சித் நாளி ஜாம காட்டோல் அம்பர் புக்குல தைபோன் ஹைனோ மஜித லம்பி சிங்ஜித பங்கி பங்கி லை கயா மனம் நுசிரு கயா சிங் சி சாலி மஜித மாகி ஜோகி சக்தி தூக்கி சக்தி தனா மஜித ஜோமுனா கங்கா செல்ஹல்லிம்னி கோயினா மதுத தோக சாரிம்னி பொன்னம் ஹெட்டலங்கனா சனான லுப்பான மணின முட்டானா கரிகி மட்டோ குங்கரே ஜோகி மாகி தூக்கி பாங்கல்னா சரகி இந்திரபூபோமி மத்தகும் புனம் ஹெட்டலங்க லோயின் ஹெட்ட சேங்குரிம்னி மதுதகி மகாமுனி சீனங்கம இவ சக்தி ஜோகி மாகி தப்பைசாகி சக்தினா சாம் கெட்ட பிரபந்த சிங்கல்லேரகா மதுத மயாம் லாய்வ மயாம் துகி சான தரணவசே அன்னபூர்ண லக்ஷ்மி இவிய மபுவோ தகட்ட கௌரேரகா மயாந்து கிசான் தனனபசே லோஜ தோக் தாத்தன லாங்கிரிம்னி மதுதகி மானா மசித பிஜித்த சக்சத பக்ஷரபி
ꯑꯗ ꯁꯦꯕꯥꯔꯤꯗ ꯍꯩꯊꯣꯏ ꯁꯤꯡꯊꯣꯏꯔꯕꯤ ꯗꯦꯕ ꯀꯩꯅꯥ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯞꯀꯤ ꯃꯍꯩꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯧꯊꯔꯦꯔꯒ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯤꯝꯅꯤ. ꯅꯨꯡꯊꯤꯟ ꯄꯣꯕꯣꯛꯀꯤ ꯃꯇꯧꯒꯨꯝ ꯃꯅꯤꯒꯤ ꯃꯉꯥꯟꯇꯅ ꯄꯨꯝꯉꯥ ꯉꯥꯜꯂꯗꯅ ꯑꯊꯣꯜ ꯑꯔꯪ ꯑꯔꯨ ꯑꯍꯦꯟ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯤꯠ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯥꯟꯗꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯂꯥꯡꯕ ꯂꯣꯏꯔꯝꯃꯦꯔꯒ ꯃꯍꯥꯃꯨꯅꯤ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯍꯥꯏꯔꯔꯦ, ꯕꯨꯡꯉꯣ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯈꯥ ꯃꯥꯏꯀꯩꯁꯤꯗ ꯆꯠꯄꯤꯔꯣ, ꯃꯄꯥ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯐꯪꯕꯤꯔꯨꯔꯣ, ꯄꯣꯊꯥꯅꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯥꯡꯉꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯑꯣꯝ ꯌꯣꯡ ꯍꯤꯡꯆꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯊꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯔꯨ ꯑꯍꯦꯟ ꯀꯌꯥꯁꯤ ꯁꯔꯒꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯅ ꯅꯥꯟꯅ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯀꯌꯥ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯥꯡꯉꯝꯃꯤꯕꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯝ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯠ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯥꯟꯗꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯩ ꯂꯩ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡ ꯍꯧꯔꯗꯅ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯆꯥꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯀꯣꯜ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯁꯦꯝꯃꯗꯅ ꯂꯥꯡꯉꯝꯃꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯝꯃꯛ ꯍꯦꯛꯇ ꯉꯥꯛꯄꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ, ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤꯃꯛꯇꯪꯗꯗꯤ ꯕꯩꯁꯅꯣꯞꯀꯤ ꯁꯦꯕꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯔꯦꯟꯖꯅ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯑꯦꯔꯒ ꯋꯥꯅ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥ ꯕꯣꯔꯅ ꯂꯦꯡꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯂꯥꯟ ꯊꯦꯡꯅꯔꯨꯕ ꯑꯩ ꯕꯨꯡꯉꯣ ꯏꯃꯥ ꯎꯙꯥꯔꯒꯤꯗ ꯋꯥꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯤ, ꯉ ꯁꯦꯕꯥ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯌꯣꯡ ꯑꯃꯃꯝꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯗꯦꯕ ꯀꯩꯅꯥ ꯇꯔꯥ ꯇꯔꯥ ꯆꯪꯉꯒ ꯁꯦꯕꯥ ꯂꯥꯡꯉꯛꯏꯝꯅꯤ, ꯐꯝꯐꯝꯁꯤꯗ ꯆꯥꯏꯊꯕꯥꯟꯁꯤꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯆꯥꯏꯊꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯖꯕ ꯄꯨꯔꯛꯇꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯩꯗꯔꯤꯝꯅꯤ, ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯐꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯤꯝꯅꯤ, ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯗꯨ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯅ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯋꯥꯔꯝꯃꯅꯤ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯂꯥꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯏꯝꯅꯤ, ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯐꯥꯜ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯗꯅ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯄꯨꯈꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯇꯦꯡꯀꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯀꯣ ꯏꯀꯣꯏꯔꯒ ꯃꯊꯦꯟ ꯌꯥꯡꯈꯩꯗꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯨꯔꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ, ꯂꯦꯛꯇꯅ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯁꯥꯏꯗꯅ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯃꯈꯜ 50 ꯕꯦꯟꯖꯣꯜ ꯍꯦꯟꯖꯥꯡ ꯃꯊꯦꯟ ꯌꯥꯡꯈꯩꯗꯨꯗ ꯏꯀꯣꯏ ꯀꯣꯏꯔꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯦꯕꯥ ꯍꯩꯈ꯭ꯔꯕꯤ ꯗꯦꯕ ꯀꯩꯅꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯪꯍꯥꯏ ꯆꯥꯃꯣꯜ ꯍꯨꯝꯃꯛꯏꯗꯤ ꯍꯨꯃꯥꯏ ꯍꯨꯝꯃꯛꯏꯅꯤ, ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯇꯅ ꯆꯥꯕꯤꯔꯣ ꯊꯛꯄꯤꯔꯣ, ꯃꯁꯤꯅ ꯈꯔꯗꯪ ꯍꯥꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯗꯪꯒ ꯃꯁꯤꯅ ꯆꯥꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕꯤꯕ꯭ꯔ ꯑꯄꯥꯝ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯒ ꯍꯥꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯅꯥꯟꯅ ꯌꯣꯡ ꯑꯃꯃꯝꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯗꯦꯕ ꯀꯩꯅꯥ ꯇꯔꯥ ꯇꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯕꯥꯁꯤ ꯂꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯅꯤꯁꯦ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯂꯩꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ, ꯂꯛꯈꯤꯃꯤ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯄꯨꯔꯅ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯣꯡ ꯊꯥꯛꯇꯅ ꯋꯥꯠꯇꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯊꯛꯅꯅꯕ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅꯕꯁꯦ ꯊꯣꯡꯅ ꯊꯥꯛꯇꯅ ꯄꯩꯗꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯣꯟꯗꯣꯛꯇꯅ ꯍꯥꯞꯄꯛꯄꯁꯤꯗꯗꯤ ꯆꯥꯔꯝ ꯊꯛꯂꯝ ꯈꯪꯍꯟꯗꯅ ꯂꯪꯀꯥꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯂꯥꯟ ꯊꯦꯡꯅꯔꯨꯕꯒꯤ ꯎꯍꯩ ꯀꯥꯡꯒ꯭ꯔꯧ ꯆꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯁꯑꯣꯝ ꯌꯣꯡꯒꯤ ꯇꯦꯡꯒꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯎꯔ ꯍꯥꯎꯔ ꯃꯊꯦꯜ ꯂꯨꯀꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯩꯗꯅ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯗꯦꯕ ꯀꯩꯅꯥ ꯇꯔꯥ ꯇꯔꯥꯅ ꯁꯦꯕꯥ ꯂꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯗꯨꯗꯗꯤ ꯒꯔꯚꯁꯤ ꯄꯨꯔꯗ ꯑꯣꯏꯈꯔꯦ, ꯆꯥꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯤꯝꯅꯤ, ꯈꯨꯠꯁꯥ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯣ, ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯐꯝꯕꯤꯌꯣ, ꯑꯁꯣꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯛꯂꯤꯝꯅꯤ, ꯑꯃꯅ ꯇꯝꯂ ꯄꯥꯅ ꯑꯃꯇ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯇꯅ ꯄꯥꯅ ꯁꯤꯗꯪ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯍꯥꯕꯤꯌꯨꯗ ꯀꯛꯂꯤꯝꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯥꯅ ꯆꯥ ꯂꯣꯏꯔꯗꯅ ꯋꯥꯔꯝꯃꯅꯤ, ꯉꯥ ꯁꯩꯖꯥꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯅ ꯄꯣꯊꯥꯕꯤꯔꯔꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯄꯂꯛꯀ ꯁꯩꯖꯥꯅꯤꯗꯣ ꯀꯥꯔꯣꯡ ꯃꯣꯟꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯄꯥꯛ ꯃꯣꯟꯗꯣꯝꯅ ꯃꯃꯨꯝ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯖꯕꯂꯤꯀ ꯀꯥꯡꯈꯟꯅꯤꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯄꯣꯊꯥꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯅꯤ ꯁꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯍꯩꯈ꯭ꯔꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯁꯇ ꯁꯦꯕꯥ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯡꯉꯩ, ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯗ ꯁꯦꯕ꾥 ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯡꯉꯩ, ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯨꯃꯥꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯧꯕ ꯂꯩ, ꯑꯃꯅ ꯀꯪꯍꯥꯏ ꯁꯥꯃꯣꯔ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯡꯗꯅ ꯑꯃꯅ ꯀꯦꯁ ꯁꯦꯕꯥ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯇꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯇꯔꯥꯅ ꯁꯦꯕꯥ ꯂꯥꯡꯉꯛꯄꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯈꯜꯂꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯑꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯤꯕꯨ ꯂꯩꯔꯝꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔꯅꯦ, ꯏꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯣꯔꯔꯦ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧꯗꯨꯕꯨ
마부 건도를 언덕이 아이 공도 누가 저런 것들 아이도 요그레네 누가 이렇게 이뻐하다 멋이 이쁘네 먹었어 콕콕 벌로이나 말로이나 따라 세발랑 할래래가 멋이 들래 이벼시디 누가 이봐도 하이는 아이래 기드래 아이인들도 아이 공도 누가 저런 것들 아이도 요그레 누가 이래 처음다 옥다네 레기세노 처음다 간다 우리 바르드와즈 무니 마나 시람 김 범마시다 보로 마나우나 난디 그라마주다 마지다 아주오기기 못하고 무디기 못하고 사비 모두 파메레가 마자타 사우나 푸르다나 싱아솔르두다 아루다 마지다 이붕오 마기 파투카부 탕카시아레게 세필 칼라다나 प्रजाबु पालो लोरपा अजोध्याबु तीर्थ कायद ममा सत्य याय फने लई व पुन मकसे आराम महा कि मफ मदुदा भरद्वाज द हंजबद गी भरद्वाज न पुन मक्षिंग से लोयन खोगो पली व लीदना नाना कथावारी कयासी सारपन निसी अहिंग सी ले ले ग परतो जु बिहाने नोंग सी फोम हेंगाल को कांजी दनी छे आराम भवाना भरद्वाज महामुनि द महामुनि हौजिक्ति अजोधिहार सदनब थौरांग पुनम कसे सदनब लांगजरगे महामुनि विदाय फिन बिरोदना माइनाय सिंहदु सुपिर बिरोदना हरबद फरे बुङो आइन हौदु उदरगे दिदनाय सिंहदु अमत हौगल ओइदौरी मियादना शंख मोयबुंदु पायरेरेगा सलेक मखा माइगेद हाइद घरेरेगा ना शंख जोंदु अमुक्तंग चाइबबो मोहि पुन मगदुदि लोइन सुन्दन तुन्दन लैरि पुन मगदो शंख जोन हेक्सार पका निमिक बसि फंग हे ठोल पडा अरे तुंगि बदन फुरा डोला अरे गो अपगो आइ अरु वो अहेलो निक ठोल बदन उरा द ओरा द मोन खांग एरे गो मिक ठोल एने छौ योंगि मे पुन मगति इपाइ पिय मंगारा गिदुगा नसि ओर मिफिबु मसेत इनति मजे मुनि गि मित्रंग दु ओलम तारे आदना महै महै अबसिद गुरुं गुरुं हेक्ता चेनरक पनि अदु अंगक पनि महामुनि माकि शक्तिना पुनमक नरां ओइ घ्रिब पुनमक सिंहदो निंसं हन्दे न पुनमक लोइन का हन घिबनि आयन लेंग तना पुष्पर थतो लागि थग सिद खोगो प मयाम पुनमक से लोइन तोम घरे मुनि विदाय ओइरे आरे राम भवाना पाउज प्राण पुत्र हनुमा तपियु रघुमणि से नंग हान मांग थादन सलमो गुहका श्रृंगपुर यौरो श्रृंगपुर दने आरामिया बोंडगी हले पौक्षी में नंग पीरमो अदु गने अजोधिया नदी ग्राम यौर गने भोरो नतोन शत्रुगो नतोन दने नाइल हले एब पावसी में पीरुरो येंगुदो प्राणवापू सिद लाई मयाम पुनम अजोधिया येंगुनि लाई सिंह से लंका की फजब अरु अहे कया उरुरो गातनी दो अरु न अजोधिया से नुंग हन नुंग घिनी अजोधिया बु लून नान ने थबु नारु गने विश्वकर्म बु कौरे गने लाइब मयाम पुन मक्षी की ने लेदे न ब मफम छेम साधना मजिद लून नान ने लंका उरुरो पुन मक गातनी अजोधिया बु ने लुदि नान दिए देने ने ना नुंग ना घिनी पुनः मगसे न टोन गा अनि गट्टा न रे गा पुनः मगसे लांगमु जर सलो आयदना हनुमान मनाय बु विदाय पीरे सिदेगी हनुमान सलेत मांग थान लागपना श्रृंगपुर हित यौरपनी श्रृंगपुर यौरपद गुहका दरबार सावन फंदना मनाय मसन मंत्री मंडोन कया तिंदना दरबार गरंग गरंग तिंदन लेगी हनुमा बांदर की मूर्ति जी संगी छोई देना इरान हो रहा लैता द्रब चंदानी छकेता मीबगी मूर्ति सब हेत ले पेरेगा गुहक मागी जगह संग पनी महाराज गुहक ऐ लाइफ से राम मनाईनी ऐ लाइफ से हौजिक इबुमो राम ने लेंगे ए बोंडगी नंगी मंगोन की पाउनी ऐ न पीरी से वो रन वो थोड़ा फुन मक लांगो ऐ पंधवे यादरे ऐ शले ऐ देना गोहक का मना ये मफ मसीदा पाव से पीर मेरेगा सलेक्टा
अयोध्या हनुमान सखी बनी पुष्प रथ अवधोला पुनिंग मानन यांग्रवा यौ।

मसे बिए देगी नी ओम दी स्वास्थ्य विकास जित वो लोमांजित वैबा पुनिंग हक्षांग आत्मा कसरेगा तू मान सुंजना हार आमदन मुक्त सोजबदा ब्रह्म बोधगी पाप लाइन को एमसी ले रे अरे महाराज पाबू नाघी के अब्र नतरेगा अभी नियम से गांग अब सोल के अब्रा पाप को निब पाप लेने हिंग पा मतर दोसोर थना गुरु नंदो ने नाम दिखा उपीने बीरगदी नाम दो ऐ सोजरेगे सिरी नाम दिखा दो पीरे दो बेदगी नियम दो गांग सोले दो अमुक्ति सोन घरे कंदोब गुरु नंदो महाराजा नहा कि से खाद लुरब चाव दोसा बामो नुबीम यौरीने बामो अहुम निने मंग मरंग सिगरी से मधु मंगनदी नाम दो अमुक नदी को कने अब थाज फाते अहुम लग सोलो अदन को हे सोंतो हलुरेने अरेदा आजो दिहा कि दसर धनिंग थो असेंग बदी हे फंगदना रीरी द मंगा नाइना पाप लेतरे वैदु ओइगरे ए महाराज महाराज चिंगर उसे पाप लो घरे चिंगर उरनु को असेंग दिहे फंगे लेंगो महाराज आयदना मदन मजिद से दशरथन हे हंगी बग गुरु विश्वामित्र से थुम बनी अरे लमी यम लाम बगी आसोन से खैरम दु उद कना लामी हा मबाम देव हंग द दशरथ दो लामी करी हरमी नंग हंग हो बरा सुम दो बने न ओगी वारी पूरम सिंह दो लोग हेली बनी मा अरे नंग दी नाम दो पी घी बरा पी घरे पी बदो कंदों ने पी घी बामोल अहुम नी दो बामोल नु बीम जाओगे अरे अमुक तंग सोन बदर नु दी पाकु और दू लई मधु न दी थाज फाते दना अहुम लक सोलन करे हे हाय उड़े ने बेद वो थवो दवा नाम वो हेला तव अमुक तंग सोन बदर ब्राह्मण कोटी की पाकु ये लई बदो वो नंग अहुम लक सोलन बजी दी बामो ब्रह्म कुल पोलग बोशिस्ते ईशान नाम हेला तौरब बीद थवोद्रब नंगी चंदांगिनी तीरि चंदा साबसी थप खेत पीबनी मा बोशिस्ते साप तिले मांग या पोतेदो चंदाल ओरनी खंगेदो मारांडो खंग कांदुदि कप एने बाम देवदु आ गुरुदेव न चाबो मुक्त दि नुक्षिबी लंगे रूब ईरान दि फंगजब महिनी अरु ब्रह्म कुल पोलब अने चंदा निमोक्तगी अरब फंगनब से गुरुदेव फिर भी नशा ईरान बुनीन मरान उमस धंजर बवाम देव दो बोशिस्त मापों की चूरू में कोले कप्तन हजर एदू नाम हेला तवेदन सापी रूबगी वानी दो बाईसल प्रेम श्री जगत लैतबदी हूं दमीन बोशिस्त मचा की प्रेम नुक्सीर फरी बो इपान पी घर सापती लेन मांगर सोदन नंग चंदान ओरनी अरग नंग परवान कोती अहुम दु सूने पुन चंदाल ओरु अरग पाप कोकदबगी लंबी दीने सोदन नसी अहुम सोहन घी बदने थोपलब नाम आराम हैबदु एक कंक्षन चार अंश ओदनने दशरथ की संगाई अवतार वरनी आराम सयं अवतार दो मधु मरु बोजो अदुन नंगी चंदांगी मूबू आराम कुयु कोदना बोशिस्ता मसाबु नुक्सी बीरादना सापन तो वसे पीहिबनी मरम मसी लेबना मजर हंडक चंदान कोटी तरे पुनभक असे आराम भी नाम सोंजरे रेगा प्रभु रामचंद्र इबुगो की कृपा देगी चंदाई में पू फूल मजद मुक्त ये दो फंजे घीबनी देवी सोम दौदना प्रभु रामचंद्र इबुगो मनाई मयाम दुग लोना देना लेंग पना मजद अजोध्या नदी ग्राम से योगसल ये दो यौराब कांसी देती हनुमान महांगना मटोन भोरो शत्रुघोल अनिद मबुंगो राम हरपो वारम पुनमक सिंह दो तमजरे ला ए ताब सिदी अजोध्या युम धो पुनमक सिंह से हरा बन नुआई बन मथुम मरांग हो घरे दो ऐ बुंगो न लंग घल पदा हरिम सिदी अदना युथ कुंथरा दिलम नि पाक चाव घरब विषय करम महांगना इंद्र भुवन मतो गुम न पुनम लंग सिंह ग्रीमी अजोध्या गे न लंबी पुनमक से अकुल अटोक तेंदना सा संदोन इफुल सिफादना थोगान भुन

0: ꯄꯨꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ 1994ꯗ ꯄꯗꯃ ꯚꯨꯁꯟ, 1994ꯗ ꯄꯗꯃ ꯕꯤꯚꯨꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ 1998ꯗ ꯚꯥꯔꯠ ꯔꯠꯅ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯦꯝꯖꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯝꯆꯠ, ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯨ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕꯤꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯇꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯅꯥꯊꯩꯔꯒ ꯃꯥꯕꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯛꯈꯪꯕꯤꯕꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯦꯔꯣꯁ꯭ꯄꯦꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯅꯤꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯔꯣꯁ꯭ꯄꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯨ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯀꯂꯥꯝ 1992ꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 15ꯗ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯅꯥꯗꯨꯒꯤ ꯄꯝꯕꯝ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯒꯤ ꯔꯥꯃꯦꯁ꯭ꯋꯔꯝꯗ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯄꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯖꯦꯟ ꯎꯂꯥꯕꯨꯗꯤꯟ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯍꯤꯍꯣꯟꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤ ꯑꯁꯤꯌꯥꯃꯥꯁꯨ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕꯤꯅꯤ, ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯀꯨꯞꯅꯣꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯆꯤꯟꯖꯕꯤꯅꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯐꯪꯂꯛꯈꯤꯗꯦ, ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯪꯒꯦꯕꯨ ꯄꯥꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ, ꯃꯪꯒꯦ ꯃꯔꯨ ꯈꯣꯝꯕ ꯌꯣꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯏ, ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯊꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯀꯂꯥꯝ ꯔꯥꯝꯅꯥꯥꯊꯄꯨꯔꯝꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ꯫ 1954ꯗ ꯇꯤꯔꯨꯆꯤꯔꯥꯄꯜꯂꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯠ ꯖꯣꯁꯦꯞ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯠ ꯂꯣꯏꯈꯤ꯫ 1955ꯗ ꯃꯗ꯭ꯔꯥꯁ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯑꯦꯔꯣꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡ ꯇꯝꯈꯤ꯫ ꯐꯥꯏꯇꯔ ꯄꯥꯏꯂꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯪꯂꯥꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕꯗ ꯃꯥꯄꯟꯁꯨꯕ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯏꯌꯔ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯈꯟꯈꯤꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯆꯪꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗꯦ꯫ 1990ꯗ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯑꯦꯟ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ DRDO ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯈꯤ꯫ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯏꯁꯄꯦꯁ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯝ ꯁꯔꯥꯚꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯂꯒ 1989ꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯏꯁꯄꯦꯁ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ISRO ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤ꯫ 1990ꯗ ꯔꯣꯍꯤꯅꯤ ꯁꯦꯇꯤꯂꯥꯏꯠꯄꯨ ꯑꯣꯔꯕꯤꯠꯇ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯊꯤꯟꯈꯤꯕ, ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯥꯖꯕ ꯁꯦꯇꯤꯂꯥꯏꯠ ꯂꯣꯟꯁ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ SLV ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤ, ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯑꯒ꯭ꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ 13ꯁꯨꯕ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯂꯩꯅ ꯂꯥꯏꯗ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯖꯥꯠ ꯕꯤꯖꯥꯠ ꯈꯥꯏꯗꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯁꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯁꯥꯟꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯀꯌꯥ ꯏꯔꯝꯃꯤ, ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯋꯤꯡꯁ ꯑꯣꯐ ꯐꯥꯌꯔ, ꯏꯒꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯃꯥꯏꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ 2020꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯁꯤꯟꯐꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯈꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯒꯤ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯚꯤꯖꯤꯇꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ 2015ꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 23ꯗ ꯁꯤꯂꯣꯡꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ IIMꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗ ꯂꯦꯛꯆꯔ ꯄꯤꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀꯥꯔꯗꯤꯌꯥꯛ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯐꯝꯗꯨꯃꯛꯇꯗ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 40 ꯁꯨꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯇꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯒꯤ ꯀꯨꯔꯥꯟꯁꯨ ꯄꯥꯏ, ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯒꯤꯇꯥꯁꯨ ꯄꯥꯏ, ꯙꯔꯃ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯔꯥꯏꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅꯤ, ꯑꯐꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯄꯥꯝꯖꯈꯤ꯫ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯗ ꯗꯣꯄꯦꯍꯔ ꯁꯃꯥꯆꯥꯔ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒ
1: ꯅꯃꯁ꯭ꯀꯥꯔ, ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯁꯦ ꯗꯣꯄꯦꯍꯔ ꯁꯃꯥꯆꯥꯔ ꯀꯤ ꯁꯥꯊ ꯃꯦ ꯀꯅꯛꯂꯇꯥ। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3

0: मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता केए सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना

0: बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश

0: अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबूधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी इम्फाल केंद्र का कंगला चैनल है। मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज़ पर फौजी भाइयों के लिए दैनिक कार्यक्रम अब आरंभ होता है।

महफिल। आइए सुनते हैं ये पहला गीत मोहरा फिल्म से। आवाज़ दिया है पंकज उदास और साधना सरगम ने।

फौज भाइयों के लिए अब प्रस्तुत है आशा भोसले की आवाज़ में एक गज़ल। फिल्म का नाम है उमराव जान।

फौजी भाइयों, आपने अभी ट्यून किया है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के कंगला चैनल से कार्यक्रम महफिल, और मैं आपकी रेडियो सखी खुराइजम बीबी रोशनी। आइए अब सुनते हैं पंकज उदास की आवाज़ में एक गीत।

अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास के आवाज़ में एक गज़ल। इस गज़ल के साथ ही हमारा आज का यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।

0: तसेच असं उन्ही मैसे तैले ताळच्या वे वेगवेगळे सवाद नॅशनल हॉलिडे स्टेट हॉलिडे त्या तैले काहीन हॉलिडे गलोच्या मुय बँक हिन आवास उमाय है मा गव्हर्नमेंट वे आवास उमाय त्या है सॅटरडे संडे बाय शूटिंग अलोय आणि नॅशनल मा स्टेट हॉलिडे त्या हिन पु मैसे शूटिंग अलोय आणि जी जी नर्सेस माय त्या अलो सेज मायनो हॉलिडे गाव तो तिथेस जी तस गलो हो बे
1: नर्सेस मै अलिवी चैलेंजेस तो है नीन को तौली पोंग पोई रे अन्य चु जी तो नुसन जुस कोरोना ते ले ही मा कोविड ते ले ही है डॉक्टर नर्सेस मै तो नु फ्रंट लाइन ही नु बुआ नु वासु पे कोविड ते ले ही निवे एक्सपीरियंसेस तो है का वेनु नीले तो वासु वे दिजो रेडियो के पिछु मै तो ही पोंग पोई हो
0: अवे कोविड ते ले ही फर्स्ट वेव वे जी है कोविड ते ले ही वासु जी है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तै सब न्यातिने थुलानो मास्क पीपीई रिस पैनु फिटुते बोर्डिंग तै दिनो फ्यानो ए सकानो आवासोए तै सब जी दवा आथता रनो शुज पत्ता बतिगा तिनी थुमोज सि दिबे तिनी नो फ्यानो आवासोए गॉक्स तो मास्क पाइ तो सपालो होताव बुबा असोनु माय हैंडल तेगा सोए तेगा नो आसुनु माय केयर सेंस सोनु माय टाटाले वेदावे नो पिशेरा वेदावे मलासो नो माय मलासो नो आसुनु माय सपालो होनो ऑक्सीजन नो पयेनो मलासो नो माय सोनु माय तेगा हैंडल सोए सका जिनो सका केयर सो बुजी आसुनु माय तावले जिनो केयर सो जि माय तावले सो ड्रानो नि माय हे जिन्या माय अन्ना माय का कोरे रानो जि हि ड्रानो ट्रालो पाउनो जि प्रेस सोए अनो माइ मिल्ला सोनो आतो सोबा सोथापे अनु जिनो हाका असोनु माइ जु फातलेचे माइ तोलिस जे जिनो असोनु तावते छे कानो जिहि सोशल डिस्टेंसिंग हाय सोबे अनु जे मौरा थे थे अनु माइ जिनो तातो अनु जे ट्रीट सोए जिनो फ्रंट लाइन हिनो आफा सबके माइ तोलिस जिनो लालो लेंगो पियानो जिनो लो फ्रंट लाइन हिनो आफा सबके जिहिनो कोरोना हाय लालो लाइ चे चे ति फ्यानो जिहि मोर रा चे चानो जिहि एवॉइड सुए
2: इंटरनेशनल नर्सेस डे वनो चपो वचिलरे मसोहि एस कोले मी हिनो पुपमलो चलो लका

आकाशवाणी इम्फाल इचु चौक्रो हुंदा पोंगो हेफे मके कुचे माओ मई कुटु कदा सुथुदाय माओ चुसबु चक्रपी को निख्रोमे थुपथे थोले राव चक्रो चिलो काई सुई लोपीवे इजोजी कुटु कदा लेहे उमु ओटालिनो लिपे कठोलो जोगचो प्रामो चोले इचु राव इख्रोमे नो इजोको माओ लाले नो चक्रलेशे आकाशवाणी इम्फाल इजोको आखा काई खो फुजे नो प्रबिले मुफो ठोकलिया क्रचिकुआ रचुरा पोंगो कुनोफो मुफुत्सु मेचा का हेउनी मदर ऑफ मॉडर्न नर्स सठोकापी लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगल मुमु मचपियो फोजी अमोनो चिथु ही इंटरनेशनल नर्सेस डे चिथु सवर रुए इखै मुफो चिथु रुकुचो ही आवर नर्सेस आवर फ्यूचर एम्पावर नर्सेस सेफ लाइफ्स टिचुनो उचुबी सवर रुपिए मणिपुर लेहा इजो इंटरनेशनल नर्सेस डे चिथु ही रुपियो चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचान नो नर्स मई इलोपिए नर्स मई नो ओले थपिपियो उमई कोश्र चिको पिलो कुरु ए फे फे कोले कपी सिस्टम समोख्रो पिलो कुरु फेसिफ्यो ओवोसो कपी टिचो ही इखै मुफो चिथु रको चोजी उचु बिलेनो फोप्रा मुसम निपिए हेबदो कुबु ही कोले निली मई मुसोनो नर्स मई समोख्रो पु पिलो कुरु दनो अबबो पिलेशे तो चीफ मिनिस्टर नो मुसो हेनो खोवे चुशो एशिया पै उरुसो कुबु चिलु लेहि फॉरेन एक्सचेंज हि चिकु लो खेलो कुरु दुनो टेल हि फो इले ओवोसो लो ले शिए कल्या वकु पै नो कुबु ओना फो ओवोसो कुचो को खेलो ले शिए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नो नुसोल मे हेनो खोवे पेट्रोल कल्या डीजल फो ओवो कसो को खेलो कुरु दुनो कोविड चिलु ले दो चेहे नो ओवो सोकोचो ऑनलाइन क्लास ए वर्चुअल मीटिंग सोकोचो उजे सोथो इक्रलोलेशे तो इडो चक्रो गुजरात ले वडोदरा हेनो चोसोवो कली सोकोचो लेनो प्राइम मिनिस्टर नो पेमनिपिए नीली मैथो फिनो पेसिप्सो अजुलोवो नुसोजी रिसोर्सेस

आकाशवाणी इम्फाल अरोहन कविवांग आज विपाउ नांगरम सा रिमेकअप द खमताई अबाउपिंग लेडी विद द लैम द कथई फ्लोरेंस नाइटिंगल वी कफरा जिमिक्शो फनिंगकोंग हिली इंटरनेशनल नर्सेस डे आज मयोन हैरा एनसीसी न सीगचिन माइक्रो लाइट वायरस आईटी एयरक्राफ्ट वी मरमली मताई मई द थैखुंग सखवाई ट्रेनिंग कैंप आखा आज इम्फाल वी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ली हाउफोखैरा Himanta Biswa Sharma Assamwi Chief Minister Phungkhwai Aju Tingshit Khuyairam Arapauping Maisaina Hangmili Aju Ogti Wiapam Huptali International Nurses Day Mion Hairam Aju Kumwi Tukwinafa Our Nurses Our Future Empower Nurses Save Lives Kachihina Lady with the Lamb the Gathai Florence Nightingale Wi Kapra Zimiksho Paningkong Hile कुम कचिद इंटरनेशनल नर्सेस डे द मयोनरा कहना मणिपुर लीला सरकार वी कला प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नरुंगमी द नर्सेस पिंगवी जिमिक्शो मयोन हैरा जिमिक्शो हिलिंग सुंद स्टेट हिवी एमएलए जंग द कथा नग चुंखना जिमिक्शो हिली रिंगफा चानपाव हंगाइरा चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचानना आवी चानपावली कहां आजकुम वी तिकुई हिना नर्स पिंगले हेल्थ केयर वी शोंग ओत मंगा खुई काका गचुंका चिथै दले आना कहां नर्स वि जिमिक्शो खरा हिली आतम कचिद आथुमली पंगशप खमिमांग मनिंगला आथुमली ककतोम लसाद ngचोन मिद आथुमी ओत मंगा हिली आतम कचिद खया कशी मिद लैद हंगाइरा नेशनल कैडेट कोर माइक्रोलाइट वायरस आईटी वि मरमली मताई मैद थैखुई खवाई ट्रेनिंग कैंप इम्फाल वि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले आच अइना हफोखैरा Training program le Aju State we Additional Chief Secretary Anurag Bajpayee na haupokmi ga haina. Camp hile NCC cadet shak tum hangphanga shukhana aeroplane kapaiwe apong kachaping samphang sa khairam. Haukuphokwi ranye le Additional Director General of Police IK Muiva kala Imphal International Airport we Director Chipemi Keishing nala sharuk khuirum hairam. Imphal Airport we Pau Atishuda Cam Hile Virus IT Micro Light Aircraft Kathum Experience Kalai Pilot Matina Tamchithai Dalai Program Hewe Sharoka Khasada Micro Light Aircraft Hi Hangphanga Shida Thangkachida Paishok Paizang Sarada Airport we Kala Airport

0: ताबिरे कुंगंगी थौराम आकाशवाणी इम्फाल निमिदांग पुंग निपाल कंगला चैनल द थमजरी रेडियो लीला मरिंग नसाब संबाई
1: हाय तोम्बा
2: इचे
1: नंगी 50% डिस्काउंट पीब रेस्टो पोकेमोन पार्क तो लोइरे हाइने करमाइन तोरिनो
2: लोइदि लोइदि कदाय दिगिनोदा अदुगा इचेना ने 50% हाइदो 50% खक्तनते 50 to 60% नि ऑफर पिरिसे अदुगा स्टॉक तो लेत्रग सुने हौजिक अदुमक बुक टोक्सिलगा डिस्काउंट अदुमक तो अदुम पिबगी खुदोंग चाबसु लेबिनि
1: हाइबिदि
2: हाइबिदि ने कनागुमबा मना मचागी लुहोंगबगी ओनपुट ओइन हाबसेनिंगबा लुहोंगदबदि मतम खरा वालिबा नत्रगा युंगकी दरकार ओइबदो हौजिमक बुक टोक्सिलगदि थाखरगी सिल्वर जुबली की ऑफर अचौब डिस्काउंट पीरीबना फंगदी
1: इने की मचानुपी लुहोंगी रेस्टो पोकेमोन पार्क सिदनी बुक तौनगे
2: रेस्टो पफ मैट्रेस मियामने हेन खंगबीरे हिप्पद हक्चांग कंफोर्टेबल मोम पार्क नी।

0: ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯖꯨꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯣꯝꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯧꯕꯤꯍꯧ, ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯁꯤ ꯄꯦꯅꯥ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ.
1: ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯄꯟ, ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯄꯟ. ITCTC NEET ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯕ ꯅꯤꯠ UG 2027ꯒꯤ ꯔꯤꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯁꯦꯜ ꯏꯆꯪ ꯆꯪꯗꯅ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯕ ꯍꯧꯖꯔꯦ. ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯛ ꯋꯥꯡꯅ ꯐꯪꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯁꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯖꯔꯤ. ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯌꯨ. ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯌꯥꯏꯀꯣꯏꯕꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ITCTC NEET ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ. ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯅꯝꯕꯔ 9863091826.
2: Human Resource Development Academy, Nurturing Excellent, Building Future. Admission open. Matik leiraba tungi yumbiril kaya puthoknabagi pandamda lepa leitana mahiroi kaya semgatliba mahilo shangni HRD Academy ghari. Chatliba session English singani kuntaru kuntaret ki Class 11 Science ki admission form thaba hojari. Council of Higher Secondary Education Manipur na lauba exam da first position holder taruk tana tana position holder kaya puthokpa ngamkhriba school ni. Chatliba session asigi admission fee free oigani. Masita sunatana mahiroi singidamak tongan tonganba khudongchaba kaya su pijari. IDP singidamak akhanana admission fee tuition fee suklau laudana mahai tamba yabagi khudongchaba su pijari. Masita sunatana NEET amasung GE integrated coaching aduga NDA gina special coaching su laijagani. Akhanaba sit khaktamak oibana khudongchaba si manghanbiganu akupamarol gidamak 700-577-8202 da contact tawbiyu natraga school gi administrative block da lengshin biru. Human Resource Development Academy, Nurturing Excellent, Building Future.
3: Class 10 pass tawraba mahiroi singna Class 11 Science tamnapagidamak Photon School Kwakaitel da ming chanbiyu. NEET G amadi atai atopa professional course singi foundation class so hapchari. Sel ichang changdana mahima sing mapung phan biyo. Tuition, coaching, transport amadi hostel gi khudong chaba su pijari. 100% mai paktuna laglaba matik charaba oja singna takpi tambiriba Photon School Kwakaitel da Class 11 Science da ming chanbiyu amadi tanabiyu.
2: Admission open.
4: Admission open.
2: International Modernized Academy Ima Nongmaibung Imphal Iski Chatliba Session English Singani Kuntaru Kuntaret ki Class 11 Science da admission toba yaregani.
4: Swatha hauraba mahiroi singbu Class 12 exam da mark wangna pass tohunba ngamjekri.
2: Ahan balakpa mahiroi chamada free admission gi khudong chaba pijare.
4: Luinana atai mahiroi singdana admission fee tangkhaye ma tanjagani.
2: Higher secondary school singi manungda lowest tuition fee laujuribe school ni.
4: Kumsi jaygi haidokiba parikha da 10% mahiroi sing pass tawki.
2: Apunba mahiroi chamaga yankhai humdoi thabada chamaga kunmathoi na letter mark funki.
4: Akupa marol gidama contact tawbiyo
2: 7005924656.
3: Manipur Technical University Takyelpat Imphal ge academic session lisingani kuntaruk kuntaret ki Civil Engineering, Computer Science Engineering, Electrical Engineering, Electronics and Communication Engineering amade Mechanical Engineering da BTech course tamna bagidamak Class 12 pass tauraba G exam thakraba amadi thahodaba mahiroi singna online admission form thajin bayaragani. Form lauba amadi thajin bagi aroiba matamna G exam thakraba singina megi tang 19 G exam thahodaba singina me kun mangane hena akupa marol gidamak university gi admission website www.mtuadmission.in natraga mobile number 9362204552 degi khangbi ba yagane. MBA course tamna bagidamak tadi tongan ba notification tholuk pangai biyo.
5: Lawmi gi nungairaba paujel Western Seeds Company gi hybrid phobi heritage 4005 thabiduna sathok leiba lawmi oibiyo. Mamang chahi mai pakna sangyeng tawkre heritage 4005 numit chama kundagina kunmanga phawbagi manungda lok payai macha yang khaidagina humputara phawba poe plus blb amasung fullsmat tagande maru yamna changna satli phawsarong masing yamna kungna pali sathok yamna lei sakthotli mahawle soidna thabiu phawdi heritage 4005 phangpham high speed kaisampat amasung adomgi anakpa tiladidak jonpham sing.
3: admission open competitive success academy uribokta class 11 science ki admission haujare lisang sitna position holders kya puthokra ba school ne handak chahi gi oinasu 99.8% pass tawbaga loinana 16 amasung 20 position chu lorakle mahiroi ni phunipa na 80% gi mathakta pass tawki experience leiraba oja singna takpi tambiri lab library sports ground amadi atai facilities matik chana leiraba school ne ln academy ge khusamnaduna medical engineering amadi atai exam thanabagi foundation course pijari nupi macha amasung nupa macha singi separate boarding facilities leiraba school sida adomgi isa singbu mai pakna athoiba mi amamam oinaba ngasimak ming chanbiu ahanba lakpa mahiro yangkhaida concession pijagani amadi bosem cbsc na lowba class 10 exam da mark wanglakpa satra sing amadi idp singi oina special concession pijagani ngasimak ming chanbiu akupamarol gidamak the competitive success academy uripo khois nam lekai near chaira court ta lengsin biru telephone number 7085554789
6: आकाशवाणी इंफाल हाउसेट निमिदांगी पुंगदरित मखाई तारी मणिपुरी दा पाउता बिरसी
7: आकाशवाणी इंफाल माइबम दिजमनी ना पाउ पाजरी आहान बता मरोई बपाउ मालेम गी अतै मपम सिंग दा पांगथोक ना बगु मणिपुर दा सो मालेम गी नर्स गी नुमित नसी पांगथोक नखी राज्य की कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट हैरी मणिपुर दा साक्थों गैस यावना पेट्रोलियम की पोलम सिंग फंगलोई हाइबेगी मी पाइलिंगाई लेते नॉर्थ ईस्ट रीजन फ्लाइंग कैंप लिसिंग अनि कुंतरु के मनुंग सन्ना फ्लाइंग ऑपरेशन ट्रेनिंग इम्फाल की ब्यूटी केंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट दा नसी हुदोखरे नीट यूजी लिसिंग अनि कुंतरु चंद्र रोय हाइना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ना वारेब लौखरे अमसुंग डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा अनिरीक्ष सुबह ओइना असम की मुख्यमंत्री ओइना नसी वासक लौख रहे मालेम की अतई मफम सिंह द पांगथोक नबुगु मालेम की नर्स की नुमित मणिपुर दसु नसी तोंगान तोंगान ब मफम सिंह द पाक सन्न पांगथोक नखी कुमसी सही की पालन थोरम से की हिरमदी अवर नर्सेस अवर फ्यूचर एम्पावर्ड नर्सेस सेव लाइव्स हाइबसनी ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन जेनिम्स सिंधुना जेनिम्स की ऑडिटोरियम पांगथोकी पालन थोरम से वांगा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जॉइंट सेक्रेटरी समीम अहमद शाहन है नर्सिंग मियोब खुनाईद तौरीब सेवा हेन चौब सर्विस लेते मांग है मियोब हिंगली नर्सिंग मसा की ओज ओथक पूर्णमक थादोक्तुना अनाब सिंह सेवा तौब की मगुन इकाई खुमनफम थोई
8: नर्सिंग की प्रोफेशन से गुणमे साब सेल्फ एस्टीम है पोसे थादे हैगोरी इगो पुनमे थादे है अनाब से मखुद पाबीरी पल से हिंगरी हिदा पीजरी मगोद हिदा कापीरी अद्दे हौगरी आई सी यू दब पेसेंट मई मोदी पुनमक तौरी सेवा सेल्फ एस्टीम इगोसे चमदाब मीगे असेंब हम्बल गुणद चेलहल
7: मणिपुर दा साक्थों गैस एलपीजी पेट्रोल डीजल मरांग कायने लेत्रे हाइब पाव संदोरलीबासी अरानबनी हाइना राज्य की कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट संदोरगली मसी मियामबुल्ला लमजिंगनबनी हाइना नुंगाइतब फोंदोरगली कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट थोक चेरोल है मणिपुर पेट्रोल डीजल एल पी जी की स्टॉक मरांग कायने लेरी अमदी कंज्यूमर सिंह नियम सुमने येंथोकले मियामना पेट्रोलियम की पोलम सिंह फंगलोई हाइबगी मिपाइनिगाय लेते कनागुम सिंह पोलम सिंह असी फंगलोई हाइदुना पंगलेद लेसिनब तौबिगनु हाइरी कनागुमना एल पी जी यावना पेट्रोल डीजल का हेन पैसिंदुना थमलम थोकलबदी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लिसिंग चमापन मरीफू अमदी पेट्रोलियम एक्ट लिसिंग चमापन कुंथ्रा मरी की मखाद अकनब थाबक लौकुटकनी हाइरी मोलनोई कुकी विलेज नुथिल पुंग ओम लोम तारकप अद्वाइद यूम कया मई थादोक्रे हाइना सोशल मीडिया संदोरलीब पाव अदु भारत लोम थंग सरुक थोकप नते हाइना पुलिस ना सिंदोरगली मणिपुर पुलिस ना सोशल मीडिया थादोरकप वरोल मधाई मफम अदु कामजोंग जिला की मनुंग सना लेब बॉर्डर पिलर नंबर साम तरा हुमदोई दगी किलोमीटर अनिरोम लामना लेब म्यांमार की सरुक अमनी ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯅ ꯂꯩꯍꯟꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ 12 ꯁꯨꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯌꯣꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯍꯥꯎꯔꯩꯕꯤ ꯍꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 6ꯗꯒꯤ 10 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ, ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ, ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯦꯝꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯀꯦꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ

ताबिरी बसी आकाशवाणी इम्फाल की मीडियम वेव मीटर चौहमनी फु दशमिक अमा किलोहर्स चनीपाल मरफनीथु दसंदुक चरीबा कंगला चैनल दगिनी हौजक पुंगफम ताबिर से तोान तोानबा मणिपुरी फिल्म सैसिंग खुदोलगी अहानबदा ताबिर से देवदास फिल्म दगी सुनीता नेप्रम की खोंजलदा एल सनाहल सैरिंगबी सगोल सेंटी चंद्रना सैरंग से खुदोल तमचरी तमिनसी।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज ट्यून इन किया है आपने और हर श्रृंगार लेकर आज आपके साथ है अर्पना। प्यार भरा नमस्कार मेरा स्वीकार करें। तो चलिए आज के हर श्रृंगार को शुरू करते हैं मैंने प्यार किया फिल्म के गीत के साथ। वक्त मिला लें 10:31 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर श्रृंगार।

जी हाँ, मौसम तो दोस्ती का आता है और उसके बाद जो बात है वो पहुंचती है धीरे धीरे मोहब्बत तक। अगर आप अपने किसी खास इंसान को याद कर रहे हैं और अपने दिल की बात बयां करना चाहते हैं तो दोस्तों FM गोल्ड आपके पास और आपके साथ है ना हमेशा। गीतों के माध्यम से दिल की बात कहना, यकीन मानिए, बेहद आसान है। हम किसी से कम नहीं फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज।

बात चांद की हो, चांदनी की हो, रात के अंधेरे की हो, बात हो दोस्ती की या फिर मोहब्बत की, तो बात कहना बेहद आसान हो जाता है गीतों के माध्यम से, ये तो आप जानते हैं। लेकिन कभी कभी खामोशियां बहुत ज्यादा नखरेबाज हो जाती हैं। बड़ी नखरेबाज हैं खामोशियां तेरी, पास बैठा हूं पर वो टूटती ही नहीं। अंजाम फिल्म से अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में ये गीत।

10:48 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर श्रृंगार, और ये गीत है लम्हे फिल्म से लता जी और हरिहरन की आवाज में। आज आपके साथ हर श्रृंगार में है अर्पणा।

दिखने वाली बातें बस बातें नहीं रहती जब हो जाता है प्यार। इस दिल की हर बात जरूरत बन जाती है। अब बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, हमारे दिल में आते हैं, जैसे तेरे चेहरे की वो खूबसूरत तस्वीर कहाँ से लाऊं, तेरे चेहरे की वो खूबसूरत तस्वीर कहाँ से लाऊं, हर लम्हा तेरे साथ गुजरे ऐसी तकदीर कहाँ से लाऊं, मैं मांगती हूँ हर जन्म में तेरा साथ, अब तू ही बता मेरे हाथों में वो लकीरें मैं कहां से लाऊं। डर फिल्म से उदित नारायण की आवाज होगी इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर। आप सुनेंगे समाचार 11:10 पर होगा गीत मेरे मनमीत।

आपके संग रहूंगी मैं अर्पणा। फिलहाल इस गीत का आनंद लीजिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत के बाद ठीक 11 बजे होंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई

0: आईआईटी में विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency, or NTA, on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group, SOG, has so far detailed

फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी। तो इन दो फिल्मों से गीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है गीत मेरे मनमीत।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड आपने ट्यून इन किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन मीत। अगला गीत होगा आनंद बख्शी का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी और इसके बाद जो गीत होगा वो आरडी बर्मन का संगीत है मजरू। सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत होगा किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। इन दो गीतों का आप आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

11:45 और 11 सेकंड हो चुके हैं। ये मधुर गीत आपने सुना किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में। आरडी बर्मन का संगीत, गुलशन बावरा का लिखा हुआ ये गीत, फिल्म का नाम ये वादा रहा। और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 MHz पर गीत मेरे मनमीत। अगला गीत है भूपेंद्र और आशा जी की आवाज में, संगीत बप्पी लहरी का है, फिल्म का नाम है एतबार। चलिए सुनते हैं ये गीत, और आज आपके साथ है अर्पणा।

जी हाँ, इन गीतों के माध्यम से आप भी जहाँ खो गए हैं उसे कहते हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। ट्यून इन किया है आपने और आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। 11:53 हो चुके हैं। अगला गीत होगा गुलजार साहब का लिखा हुआ, आवाज है लता मंगेशकर और भूपेंद्र की, फिल्म का नाम है मौसम। इस गीत के साथ ही अर्पणा को दें इजाजत। गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अपना ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। मेरा प्यार भरा नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न राज्य स्थानों पर भेजी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।

0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे से पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉ सरमा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में उपस्थित रहे। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को व्यवहार में अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 86 रन पर ऑल आउट हो गई। कगिसो रबाडा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। फुटबॉल में ईस्ट बंगाल ने लगातार दूसरी बार भारतीय महिला लीग का खिताब जीत लिया है। सीथू एफसी और सेसा फुटबॉल अकादमी के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ होने के बाद ईस्ट बंगाल ने खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

दिन की सहर आएगी, रात के बाद नए दिन की सहर आएगी। दिन नहीं बदलेगा, तारीख बदल जाएगी। दिन नहीं बदलेगा, तारीख बदल जाएगी। हंसते हंसते कभी थक जाओ तो छुप के रो लो। हंसते हंसते कभी थक जाओ तो छुप के रो लो। ये हंसी भीग के कुछ और चमक जाएगी। ये हंसी भीग के कुछ और चमक जाएगी। जगमगाती हुई सड़कों पे अकेले न फिरो। जगमगाती हुई सड़कों पे अकेले न फिरो। शाम आएगी किसी मोड़ पे डस जाएगी। शाम आएगी किसी मोड़ पे डस जाएगी। रात के बाद नए दिन की सहर आएगी। दिन नहीं बदलेगा, तारीख बदल जाएगी। दिन नहीं बदलेगा, तारीख बदल जाएगी। और अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आंखें, आवाज है लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। आ जाओ तसव्वुर में तस्वीर बना लेंगे, आ जाओ तसव्वुर में तस्वीर बना लेंगे, हम शाम जुदाई की तकदीर बना लेंगे। आ जाओ तसव्वुर में तस्वीर बना लेंगे, हम शाम जुदाई की तकदीर बना लेंगे। कैसे ही सही लेकिन कुछ ख्वाब हमें दे दो, कैसे ही सही लेकिन कुछ ख्वाब हमें दे दो, हम उनकी कोई रंगी ताबीर बना लेंगे, हम उनकी कोई रंगी ताबीर बना लेंगे। आ जाओ तसव्वुर में हम तस्वीर बना लेंगे, हम शाम जुदाई की तकदीर बना लेंगे। और अगला गीत आप सुनेंगे मुकेश की आवाज में, फिल्म का नाम है आनंद।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। यूं भी नहीं कि शाम व सहर इंतजार था, यूं भी नहीं कि शाम व सहर इंतजार था, कहते नहीं थे मुंह से मगर इंतजार था। मुद्दत के बाद फूल की सूरत खिला था दिल, मुद्दत के बाद फूल की सूरत खिला था दिल, शबनम की तरह ताजोतर इंतजार था। बालों में धूल पांव में छाले न थे मगर, बालों में धूल पांव में छाले न थे मगर, फिर भी कुछ एक रंज सफर इंतजार था, फिर भी कुछ एक रंज सफर इंतजार था। यूं भी नहीं कि शाम व शहर इंतजार था, कहते नहीं थे मुंह से मगर इंतजार था। वक्त आ चला है आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी की सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता

0: प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को व्यवहार में अपनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, डीजीपी और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य वीआईपी काफिलों के वाहनों की संख्या तुरंत 50% कम करने के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबफ ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी आई है। इस बीच कुवैत ने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात में ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल की आयरन डोम रक्षा प्रणाली के इस्तेमाल की भी आधिकारिक पुष्टि हुई है। रूस ने सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस सफल परीक्षण पर रूसी सेना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरमत दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल प्रणालियों में से एक है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने की ये खूबसूरत महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने का पहला गीत फिल्म का नाम है कॉलेज गर्ल।

हरेक रंग सदा शाख पर नहीं रहते, हरेक रंग सदा शाख पर नहीं रहते, जो पास हो भी वही उम्र भर नहीं रहते। बहुत चमकते हैं कुछ लोग पहली बारिश में, बहुत चमकते हैं कुछ लोग पहली बारिश में, मगर वो बाद में पहले से तर नहीं रहते। हर एक रंग सदा

शाख पर नहीं रहते, जो पास हो भी वही उम्र भर नहीं रहते, जो पास हो भी वही उम्र भर नहीं रहते। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश, आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

रात ने धीमे से चांद से कहा, रात ने धीमे से चांद से कहा, तुम्हारी चुप्पी इतनी गहरी क्यों है? चांद मुस्कुराया, मैं हर उस दिल का आईना हूं जो बोल नहीं पाता। रात बोली, फिर ये तन्हाई किसकी है? चांद ने उत्तर दिया, ये उन लफ्जों की है जो होठों तक आकर लौट जाते हैं। रात ठहरी, क्या कोई सुनता भी है इन्हें? चांद झुका, हां, जो रोशनी से नहीं एहसास से देखते हैं। रात ने आंचल फैलाया, तो आज मैं इन्हें समेट लूं? चांद ने सिर हिलाया और कहा, समेट लो वरना ये दर्द बन जाएंगे। रात बोली, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? चांद ने कहा, क्योंकि शोर में कोई सच्चाई नहीं होती, क्योंकि शोर में कोई सच्चाई नहीं होती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है तलाश, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरी सूरत तेरी आंखें, आवाज है सुमन कल्याणपुर और मुकेश की।

तुम्हारा साथ हो तो हर कमी कम लगती है, तुम्हारा साथ हो तो हर कमी कम लगती है, ये दुनिया भी उसी पल कुछ नरम लगती है। तेरी हंसी में कोई रोशनी सी बसती है, तेरी हंसी में कोई रोशनी सी बसती है, उसी के संग मेरी हर घड़ी चमकती है। तुम्हारी याद का मौसम अजब करिश्मा है, तुम्हारी याद का मौसम अजब करिश्मा है, उदास शाम भी चुपके से मुस्कुराती है, उदास शाम भी चुपके से मुस्कुराती है, तुम्हारा साथ हो तो हर कमी कम लगती है, ये दुनिया भी उस पल कुछ नरम लगती है। और अगला गीत फिल्म का नाम है आप।

वक्त आ चला है कि आपको एक बार फिर याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है कभी कभी, आवाज है किशोर कुमार की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। उसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलिवफ ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी आई है। इस बीच कुवैत ने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचेंगे, जहां उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 2 दिन की अहम शिखर वार्ता होगी। ये शिखर बैठक ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान से जुड़े संकट के कारण अमेरिका और चीन के संबंधों पर दबाव बढ़ गया है। ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरो मध्य बंद किए जाने और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी से चीन के तेल आयात और व्यापार पर असर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सांगली में कल दोपहर दीवार गिरने की घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इस हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनहानि की खबर से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को व्यवहार में अपनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, डीजीपी और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य वीआईपी काफिलों के वाहन की संख्या तुरंत 50% कम करने के निर्देश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और रात सुरमई में

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है बॉर्डर, आवाज है सोनू निगम और अलका याग्निक की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है कृष्णा कॉटेज, आवाज है श्रेया घोषाल की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम हमराही में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अभी आपसे रूबरू हो रहा है आपका दोस्त शमीम खान। दोस्तों, रात के इस धीमे ठहरे हुए पहर में जब शहर की आवाजें थम कर सो जाती हैं और कुछ अधूरे ख्वाब और ख्याल अब भी जाग रहे हैं, आप सुन रहे हैं वो सफर जहां बातें कम होती हैं और एहसास ज्यादा होते हैं। कुछ रातें सिर्फ रातें नहीं होती, वो पुराने खतों की तरह खुलती हैं, जिनमें किसी की हंसी रखी होती है तो किसी की नाराजगी, तो कहीं कुछ अधूरी मुलाकातें। आज की इस महफिल में हम उन्हीं यादों के कोनों में चलेंगे जहां पुराने हिंदी गीत बसते हैं, या यूं कहूं कि अब भी चुपचाप सांस लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे ही नगमे से जो शायद आपने भी कभी किसी की याद में गाया हो या सुना हो। तो आइए सुनते हैं उस खूबसूरत गीत को जिसे आवाज दी है किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने।

रात जैसे जैसे गहरी होती जाती है, यादें भी अपनी आवाज बढ़ा देती हैं। कुछ चेहरे धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वक्त बीतने के साथ भी दिल की दीवारों पर वैसे ही टंगे होते हैं। बहुत अजीब बात है ना ये। कभी कभी एक पुराना गीत सालों बाद भी आपको वही एहसास लौटा देता है जिसे हम समझते थे कि हम भूल चुके हैं। अगला गीत शायद आपको वही एहसास दोबारा से लौटा दे। आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग

0: यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है हमराही, और अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम खान।

दोस्तों, अगर आप इस वक्त अकेले हैं तो ये बात याद रखिए कि अकेलापन हमेशा उदासी नहीं होता। कभी कभी यही वक्त हमें अपने सबसे करीब ले आता है, जहां कोई दिखावा नहीं होता, कोई जल्दबाजी नहीं होती, बस दिल और उसकी आवाज। वो शायद इसलिए क्योंकि उसमें जिंदगी भागती नहीं बल्कि ठहर जाती है। और यही वो वक्त होता है जब हमारा दिल पूरी तरीके से मदहोश हो जाता है, ठीक इस गीत की तरह।

दोस्तों, कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होकर भी अधूरी रह जाती हैं और कुछ अधूरी होकर भी उम्र भर साथ चलती हैं। हम सब के दिल में कोई ना कोई ऐसा कोना होता है जहां एक नाम आज भी हल्के से धीरे से दस्तक देता है, और शायद इसीलिए पुराने गीत हमें इतने अपने लगते हैं, क्योंकि वो सिर्फ गाए नहीं गए हैं बल्कि वो गीत जिए गए हैं। अब कार्यक्रम का अगला गीत उन एहसासों के नाम जिन्हें कभी शब्द नहीं मिल सके, लेकिन वो हमारे दिल के कोने में कहीं ना कहीं आज भी हैं।

दोस्तों, रात का यह हिस्सा सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि इसी वक्त दिल सबसे ज्यादा सच बोलता है। जो बातें दिन की रोशनी में हम टाल देते हैं, वो रात की खामोशी में अक्सर चुपचाप आकर हमारे पास बैठ जाती हैं। लेकिन शायद यही तो संगीत का काम है, जो हमारे भीतर के शोर को धीरे धीरे सुकून में बदल देता है। और अब एक ऐसा गीत, एक ऐसा नगमा जो बरसों से तन्हा रातों का साथी बना हुआ है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है हमराही और अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम।

दोस्तों, पुराने गीत सिर्फ संगीत नहीं होते, ये वक्त के वो टुकड़े हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते। चलते चलते एक आखिरी नगमा, उन लोगों के नाम जो याद तो बहुत आते हैं लेकिन अब जिंदगी में नहीं आते। ये रात सलामत रहे और यादें महफूज रहें और संगीत हमेशा आपके साथ रहे। इस कार्यक्रम से मुझे आपके दोस्त शमीम को दीजिए इजाजत। अलविदा, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाड्डी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा के मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर रहेगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक धार्मिक आयोजन के दौरान दीवार गिरने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम अरुणिमा में आपका स्वागत है और अभी आपसे रूबरू हो रहा है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों, आज की इस शांत रात में हम साथ चलेंगे उन गीतों के जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, वो नगमे जिनमें मोहब्बत भी है, इंतजार भी और अधूरी बातें भी। तो बस खिड़की के बाहर देखिए, अगर आपको चांद दिख जाए तो बस हल्का सा मुस्कुरा दीजिएगा, और अगर किसी की याद आ जाए तो आज उस याद को आने दीजिएगा।

दोस्तों, कभी कभी ना जिंदगी हमें बहुत आगे ले जाती है, इतना आगे कि पीछे मुड़कर देखने का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन फिर अचानक कोई पुराना गाना हमारे कानों में सुनाई देता है। हम फिर वहीं लौट जाते हैं, उसी गली में, उसी मौसम में, अपने लोगों के बीच, जहां किसी ने पहली बार हमारा नाम लेकर पुकारा था। दोस्तों, हमारे हिंदी फिल्मों के गीतों में यही तो बात थी, ये सिर्फ धुनें नहीं थी बल्कि लोगों की अधूरी कहानियां थी जो कभी मुकम्मल नहीं हो पाई।

दोस्तों, रात जितनी गहरी होती जाती है, दिल उतना सच बोलने लगता है। दिन में हम सब कुछ ठीक होने की अदाकारी करते हैं, लेकिन रात किसी अदाकारी को नहीं मानती। वो पूछती है, क्या सच में सब भूल गए हो? क्या सच में अब फर्क नहीं पड़ता? और फिर कहीं दूर रेडियो पर एक पुराना गीत बज उठता है और जवाब खुद ब खुद आंखों में आ जाता है।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है, अरुणिमा और शमीम हैं अभी आपके साथ। दोस्तों, अगर इस वक्त आप सफर में हैं, कोई लंबी सड़क आपके साथ चल रही है, या फिर कमरे की लाइट बंद करके आप चुपचाप बैठे हैं और रेडियो सुन रहे हैं, तो ये गीत आपके लिए है। क्योंकि कुछ बातें शब्दों में नहीं कही जाती, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे रात की हवा या किसी की कमी, और उस कमी को महसूस करता हुआ ये खूबसूरत सा गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और कुमार शानू ने,

दोस्तों, रात अब और शांत हो गई है और घड़ी की सुइयां 4:48 बजा रही हैं। और ऐसे वक्त में दिल सबसे ज्यादा पुराना हो जाता है। उसे पुराने लोग याद आते हैं, पुरानी जगहें, पुरानी खुशबुएं और वो आवाज जिसे सुने हुए शायद बरसों बीत चुके हों।

दोस्तों, ये गीत संगीत हमेशा हमें अपनों की याद दिलाते रहेंगे। दिल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसमें एक कोना हमेशा पुराना रहता है। दोस्तों, कार्यक्रम अरुणिमा में आज यहीं तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगला गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस करेगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवी के सरकार के लिए आज होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपड्डी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा

0: करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपूर्ति में आई बाधाओं को प्रभावी रूप से संभाला है और ये सुनिश्चित किया है कि जनता पर इसका न्यूनतम बोझ पड़े। सीआईआई वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत ने घरेलू उत्पादन को 36,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन कर दिया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। श्री पुरी ने कहा कि भारत के पास 60 दिन का कच्चा तेल और एलएनजी तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार मौजूद है और आपूर्ति को लेकर कोई समस्या नहीं है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा के मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स की टीम 86 रन पर ऑल आउट हो गई। प्रतियोगिता में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम भोर सुहानी में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम। दोस्तों, ये रात धीरे धीरे सुबह की तरफ बढ़ रही है और इस शांत वक्त में अगर आप जाग रहे हैं तो शायद जिंदगी आपसे कुछ कहना चाहती है। कभी कभी सन्नाटा भी बहुत खूबसूरत जवाब देता है। बस सुनने वाला दिल होना चाहिए।

दोस्तों, आज की सुबह उन सभी लोगों के नाम जो टूटे नहीं हैं, बस थोड़ा सा थक गए हैं। यकीन मानिए, हर मुश्किल रात के बाद जिंदगी फिर से मुस्कुराना सीख जाती है। और शायद आज की सुबह आपके लिए वही नई शुरुआत लेकर आई है, ठीक इस गीत की तरह।